0: कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा।
1: वा क्या बात है, अतिशय सुंदर सर, कान अगदी तृप्त झालेत, भक्तिमय वातावरण आज रेडिओ नगरचं झालंय सकाळी सकाळी।
2: धन्यवाद। असंच की आजच्या युवांनी जीवन से मत हार, आज के युवा हो, आज की तुम देश की शान हो, देश के सैनिक हो, देश के स्टूडेंट हो, आज हमारी संस्कृति दुनिया को प्यारी है और इस दुनिया को प्यारी के संग जो तुम्हारे से हुआ अभी आप नहीं होगा, आप तुम आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे कि टाइम समय वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए कि तुम जीवन से मत हारना मेरे दोस्तों। सलाम आता है सुंदर सा गाना कि जीवन से ना हार जीने वालों, आजच्या युवांसाठी खास आहे की जवर सूर्य चंद्र तारे राहतील हे कलावंत हे भक्ती हे सैनिक येत राहतील आणि कला ही जिवंत ठेवली पाहिजे।

हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, लहरा कर दुनिया के सुख दुख को।

0: कभी तो हंसाए।
1: कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।